नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: पेशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof.
1: It's commercial time.
2: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Zabardast hits.
8: Music never sounded better.
4: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
7: I love it.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beats.
8: Wow, FM.
9: Only tune super hit channel.
10: Fizz on 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: It's music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
9: I love it.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: जबरदस्त हिट्स
1: म्यूजिक नेवर स्टॉप।
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
4: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
5: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
7: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनमारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972 ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07595150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM।
13: You are listening 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत्याकार, हेलो हेलो हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल एक्साइटिंग प्लस चार्मिंग मॉर्निंग तमाम तर सुनने वालों के लिए खुश आमदीद। तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो दीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप पे। जैसा कि है लिसनर्स, आप सभी को मालूम कि रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ होती है मेरी और आपकी कम्युनिकेशन। एंड देन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है इंटरटेनमेंट का फुल डोज, यानी कि वो सभी टॉपिक जो कि हमारे लिसनर्स, हमारी महिला मित्र सुनना चाहती हैं, और कुछ ऐसे म्यूजिकल ट्रैक्स। सो हर दिन कोशिश यही रहती है कि हम अपने प्रोग्राम में वो तमाम तर चीज़ों को ऐड अप करें जो कि हमारे लिसनर्स को पसंद है, ताकि हमारा ये शो हमारा शो ना रहे बल्कि बन जाए आपका शो। सो जी, हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत सारी चटपटी बातें, गॉसिप्स, अच्छे अच्छे से म्यूजिकल ट्रैक्स, और फिर आपकी कुछ दास्तानें। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, या फिर आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम अपनी शमूलियत का इजहार करें, सो बहुत सिंपल सा है, ईजी सा है, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको जस्ट 2 to 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप बन जाएंगे हमारे इस फैमिली का हिस्सा। सो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपनी कीमती आरा का इजहार हमसे कर सकते हैं। सो 01157100971 ये है हमारा प्यारा सा, सिंपल सा, छोटा सा व्हाट्सएप नंबर। सो आपने कर लेना है इस नंबर को सेव। सेव करने के बाद आपने सिंपली जाना है अपने फ़ोन पर, अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आप करना चाहते हैं हमसे शेयर, या आप चाहते हैं कि हम आपकी उस गुफ्तगू को अपने प्रोग्राम की जीनत बनाएं और बाकी तमाम तर लिसनर्स के साथ शेयर करें। सो सिंपली आप हमें बता सकते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी उस गुफ्तगू को हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। साथ ही साथ आज के दिन के हवाले से या फिर जिंदगी के किसी पहलू के हवाले से आपको चाहिए कोई भी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस, होता है समटाइम्स इंसान का दिल करता है कि कोई इंसान को सुने और उसे समझे। सो अगर आपकी जिंदगी में भी है किसी ऐसे इंसान की कमी जो आपको सुने, आपको समझे और आपको आपकी मर्जी के मुताबिक दे अच्छी सी एडवाइस, तो आपकी उस कमी को हम करेंगे दूर। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिंपली बस आपको हमें बताना है, हमें आगाह करना है कि आपको ज़िंदगी के किस पहलू से रिलेटेड चाहिए कोई भी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस। साथ ही साथ लिसनर्स, आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह का म्यूज़िक, म्यूज़िकल ट्रैक्स हैं आपको पसंद। सो वेल, पूरी कोशिश की जाएगी कि वो तमाम तर गाने हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। सो लिसनर्स, साथ ही साथ आप सभी को बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू ना सिर्फ आप कर सकते हैं हमें ट्यून बल्कि बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा। तो अगर आपको भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड, या फिर आप जानना चाहते हैं कि रेडियो फजा 97.1 FM पर हाल ही में कौन से नए प्रोग्राम्स आने वाले हैं, या आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है शामिल होने वाला, सो ये हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो करना ये है कि आपने बस लॉग इन कर लेना है इस वेबसाइट को। वेल, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। सिंपली जाना होगा आपको एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM, एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट कीजिए, जल्दी से इसे कर लीजिए इंस्टॉल, क्योंकि यही है वो रास्ता जो आपको हमसे और हमें आपसे मिलाता है। सो अब से लेके ठीक 2 घंटे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ, गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा, हर तरह के मौजू पे हम करेंगे डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ इस दीवा डायलॉग में। सो अगर आपने अभी तक इस खूबसूरत दिन का आगाज कर लिया है तो
तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत से प्यारे से दिन का आगाज नहीं किया तो आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से दिन का आगाज इस प्यारे से खूबसूरत से ट्रैक के साथ। सो लिसनर्स, इस ट्रैक है थोड़ा सा एनर्जेटिक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी वाइब जो है बहुत ही ज्यादा डल हो जाए, थोड़ी सी रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक। सो चलते हैं, सुनते हैं ये एनर्जेटिक सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गुफ्तगू का सिलसिला हम मजीद आगे बढ़ाएंगे।

See, so listeners, कैसा लगा आपको ये energetic सा track? And I think so, कि इस track को सुनने के बाद आपके अंदर जो सुस्ती और काहली छाई हुई होगी वो काफी हद तक कम हो चुकी होगी. So, the listeners, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं. सबसे पहले बताइएगा कैसे हैं आप सब. उम्मीद तो यही है कि आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं मगन होंगे. वेल, इस वक्त जो टाइम चल रहा है, सो अगर हम टाइम की मुनासिबत से बात करें तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स इस वक्त अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर होंगे ऑफिस की तरफ रवा दवा. सो अगर आप भी हैं रास्ते में, ड्राइव कर रहे हैं या पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो मैं आपको बताते चलती हूँ कि किस तरह से आपकी ये ड्राइव बन सकती है खूबसूरत. साथ ही साथ अगर आप डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं तो इस डेस्टिनेशन को भी मजीद प्यारा बनाया जा सकता है. किस तरह से? सिर्फ और सिर्फ हमारे यानी रेडियो फजा 97.1 FM की आवाज़ों को ट्यून करके. सो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यह ड्राइव इसी तरह से चलती चली जाए और आपको खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ें, खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक सुनने को मिले, तो उसके लिए आप हमें फजा डैब के थ्रू ट्यून कर सकते हैं. सो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि ड्राइविंग इट्सेल्फ इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क. और मैं जब भी कभी ड्राइव कर रही होती हूँ या व्हेनेवर मैं रोड पर होती हूँ तो मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती हूँ कि एट दैट मोमेंट कि मैं किसी और चीज़ को फोकस ना करूँ. अगर माइंड में कुछ भी चल रहा हो, समटाइम्स डेली बेसिस पर होता है कि डेली टास्क की टेंशन या फिर आज ऑफिस में क्या काम पेंडिंग पड़ा है उसको करना है हमने कंप्लीट, और भी इस तरह की बहुत सारी थॉट्स होती हैं जो जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स हमारे माइंड में पॉप अप कर रही होती हैं. लेकिन आपने उन सब की तरफ ध्यान नहीं देना, पहले आपकी प्रायोरिटी आपकी ड्राइविंग होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं और जान है तो जहान है.

सो बात करते हैं आज के दिन के हवाले से। तो अब आज है आज है थर्सडे और तकरीबन ये जो वीक हमने मंडे से स्टार्ट किया था अब अपने इख्तिताम को पहुंच ही चुका है। सो आई नो फ्यूअर पीपल आर थिंकिंग किस तरह से अब ये वीकेंड स्पेंड करना है, क्या क्या काम करनी है। और आई नो कि थर्सडे आते ही इंसान थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है और बस इंसान के माइंड में यही चल रहा होता है कि अब वीकेंड आने वाला है, फाइनली इंसान को पूरे हफ्ते के कामकाज से एक ब्रेक मिलेगा। सो सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़, कुछ ऐसी खबरें जो दुनिया में काफ़ी हैरान कुन खबरों में से कंसीडर की जाती हैं। सो अभी कल ही की एक न्यूज़ जो कि सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है, आइए आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। सो द लिसनर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक परिंदा, हाँ एक बर्ड, कितने का हो सकता है? आई थिंक सो 5,000 या फिर 10,000, चले बहुत कर ले तो 50,000 या चले 1,00,000। छोड़े ये सब, आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसे सुनते ही आप काफी हद तक हैरान बल्कि परेशान हो जाएंगे। सो रिसेंटली अबू धाबी में चल रहे हैं एक मेगा एग्जीबिशन जिसका नाम है अबू धाबी इंटरनेशनल हंटिंग एंड एक्यूरिस्टन एग्जीबिशन, और वहाँ एक ऐसी बोली लगाई गई जो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली थी। सो एक छोटा सा नया फाल्कन जिसका नाम है, वो पूरी दुनिया में 1.5 मिलियन यूएई धीरम्स में बिका है। कैन यू इमेजिन, एक छोटा सा परिंदा इस कदर महंगा, इस कदर एक्सपेंसिव। जी हाँ, सही सुना आपने, 1.5 मिलियन धीरम्स। अगर इसको हम कन्वर्ट करें दूसरी कंट्री की करेंसी में, सो ये लगभग 11 करोड़ रुपीस के आसपास होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस परिंदे में ऐसा क्या खास है, चलिए इसकी फुल डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। सो बेसिकली ये परिंदा आम बाज जैसा नहीं है, ये एकदम बर्फ की तरह सफेद, इसका पूरा बदन चांदी की तरह चमकता है, इसका कुल वजन सिर्फ 1000 ग्राम है और इसकी लंबी और चौड़ाई 16.5 इंचेस है। लेकिन इस छोटे से जिस्म में कमाल की स्पीड और शिकार की सलाहियत पे इंतहा मौजूद है। और अच्छा, अब इसकी मजीद खासियत की जानिब बढ़ते हैं। सो इस परिंदे को किसी आम जगह से नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट के मशहूर जगह से लिया गया है, और अगर हम इसके इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो अरब कल्चर में फाल्कन रखना कोई आम बात नहीं है, ये वहाँ की रॉयल्टी, पावर और स्टेटस की निशानी माना जाता है। सो बोली लगाने वाले ने इस फ्लाइंग इन्वेस्टमेंट पर दिल खोल कर पैसा बहाया। यहाँ इस साल की एग्जीबिशन का अब तक का सबसे महंगा परिंदा यही बन चुका है। सो जो लिसनर्स, अगर आपके पास 11 करोड़ रुपीस हों तो क्या आप ऐसा परिंदा खरीदना चाहेंगे या आप अपने पैसों को किसी और जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे? लेकिन ये तो बात करती है रॉयल्टी पर, पावर पे, स्ट्रेंथ पे। सो जिस तरह से हर जगह का एक अपना रूल होता है, अपना कानून होता है, अपना कायदा, सो कुछ इसी तरह से दुबई के रूल्स में ये आया जाता है। लेकिन वैसे अगर पर्सनली आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा फिजूल खर्ची मानी जाती है, और आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी एक परिंदे पर इस कदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वेल, हो सकता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तभी उन्होंने की हो। सो द लिसनर्स, ये तो थी कल की एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैरान कुन न्यूज़, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिसनर्स के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव न्यूज़ को शेयर किया जाए। सो द लिसनर्स, अगर आप उन अरब शेख की जगह होते तो क्या आप इस कदर महंगा परिंदा खरीदते या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार करिए हमसे हमारे लिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। सो 01157100971, इसका रास्ता हमेशा आप सभी के लिए खुला रहता है। सो आप भी मुझसे अपनी कीमती राय का इजहार करें, और मेरा तो ख्याल यही है कि इंसान को अपने पैसे बचा के रखने चाहिए। इन केस अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं भी, तब भी इस तरह से वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि इट्स जस्ट अ बर्ड। अगर आप कितने भी
पैसे लगा ले, कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर ले, फैल्कन तो फैल्कन ही रहेगा। अदरवाइज अगर आप इस पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं तो मे बी आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाए। सो ये तो थी मेरी थिंकिंग। अब हर इंसान का अपना अपना सोच का नज़रिया होता है। सो ये तो होगी कुछ इन्फॉर्मेटिव बात। अब जरा डीवा डायलॉग में वक्त हुआ है एक अदद ट्रैक को शामिल करने का। सो किस तरह का ट्रैक आप सुनना चाहते हैं, इंडियन, हिंदी, बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर लॉलीवुड? सो जिस भी तरह का म्यूजिक है आपको पसंद, सो डू लेट मी नो ताकि मैं उसे अपने प्रोग्राम की जीनत बनाऊँ। सो फिलहाल के लिए मैं जो गाना प्रोग्राम में शामिल करने जा रही हूँ वो है थोड़ा सा इमोशनल, लेकिन आपने सुन लेना है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना। और इस प्यारे से ट्रैक के उस पर होती है आपसे मुलाकात और फिर गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

इस प्रोग्राम में इस वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का, सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहना है। हम बस यूं गए और यूं आए, सो स्टे ट्यून विद अस।

एंड वी आर बैक, वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम सुनते हुए समातों को खुशामदीद डीवा डायलॉग में। जी तो लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होश, आपकी दोस्त ज़ैनब फातिमा, और एक बार फिर से आप सभी की हिदमत में हूँ हाजिर। सो बेसिकली ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। सो अगर आपका भी शुमार है उन्हीं सब लोगों में से जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून किया है, सो आप हमें बता सकते हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं। सो किस तरह से आपने हमें आगाह करना है 01157100971, और साथ ये भी बता सकते हैं कि वेल आज के दिन के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं। मे भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में कोई अच्छी एडवाइस चाहिए हो, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतरीन एडवाइस प्रोवाइड करें। साथ ही साथ गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा। सो वेल लिसनर, जैसा कि अभी कमर्शियल ब्रेक चल रहा था, सो कमर्शियल ब्रेक के दौरान मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी एंड सडनली एक पोस्ट मेरी आंखों के सामने से गुजरी। सो वो बात मुझे काफ़ी ज़्यादा डीप लगी। मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात को अपने लिसनर्स के साथ भी शेयर किया जाए और साथ ही साथ उनका भी फीडबैक लिया जाए। सो द लाइन सेज, यू कैन बाय एनीथिंग बट यू कैन नॉट ऑलवेज बाय समवन हु इज एक्साइटेड टू मीट यू। आई नो सिंपल सुनने में तो ये एक बेसिक सी लाइन लगती है, बट जब आप डीपली इसको फील करते हो तो यू रियलाइज के बात काफ़ी गहरी है और साथ ही साथ मीनिंग भी काफ़ी ज़्यादा गहरी है। सो लाइन कुछ यूं कहती है कि आप जिंदगी में हर तरह की चीज़ें, हर तरह की आसाइशें खरीद सकते हो। यू कैन बाय अ कार, यू कैन बाय अ हाउस, क्लॉथ्स, मोबाइल फोन और एनीथिंग, बट यू कैन नॉट बाय समवन हु इज़ ऑलवेज एक्साइटेड टू मीट यू। यानी कि आप ज़िंदगी में वो मुखलिस रिश्ता नहीं खरीद सकते या मुखलिस लोग नहीं खरीद सकते जो आपकी प्रेजेंस को पसंद करे, आपसे मिलने में खुशी महसूस करे या आपको अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त और एहसास दें। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस दुनिया में करियर के पीछे, दौलत के पीछे और फेम के पीछे इस कदर पड़ जाते हैं कि वो लोग बस अपनी ज़िंदगी का मेन गोल इसी को रखते हैं, और जब वो तमाम तर चीज़ें हासिल कर लेते हैं देन उनको एहसास होता है कि ज़िंदगी में उनके पास दौलत तो है, शोहरत तो है, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो है प्यारे लोग, अच्छे रिश्ते। और वैसे भी फरमाने अली है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब इंसान वो नहीं होता जिसके पास दौलत नहीं होती, शोहरत नहीं होती, बल्कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब इंसान वो होता है जिसके पास कोई भी बेहतरीन दोस्त नहीं होता। सो जब मैंने ये पोस्ट देखी और ये लाइन पढ़ी तो सडनली एक से दो मिनट मैंने इसको अपने माइंड में प्रोसेस किया और उस प्रोसेस के दौरान मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि आओ हम मिलते हैं या लेट्स हैंग आउट, या फिर कोई मुझसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हो। सो मैं भी दो से तीन मिनट इसी सोच में गुम हो गई और मुझे लगा कि आई विश ऐसा पॉसिबल हो सकता कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भी खरीद सकते या बाय कर सकते जो हमारे साथ अच्छा महसूस करते हों, जो वाकई हमारी कंपनी को इन्जॉय करते हों, या जब वो हमसे मिलते हों तो ये सब तमाम तर चीज़ें उनके माइंड में ना आती हों कि हमें जल्दी घर जाना है या फिर काम करना है या फिर लेट हो रहे हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आई नो ये काफ़ी डीप और इमोशनल लाइन है, सो मेरे लिसनर्स में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको फील कर सकते हैं। सो अगर आप भी रिलेट कर रहे हैं इस लाइन से, इस सिचुएशन से, तो आप हमसे अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं 01157100971 इस नंबर के थ्रू। सो जैसे ही ये लाइन मैंने पढ़ी, साथ ही साथ मेरे माइंड में एक मॉरल भी आया। सो मैंने सोचा कि ये भी अपने लिसनर से शेयर करते हैं। सो आई नो बहुत सारे लोग जो ऐसा फील करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किसी ऐसे मुखलिस इंसान की, मुखलिस दोस्त की कमी है जो उनसे मिलने को एक्साइटेड फील करे, तो उसके बरक्स हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो वाकई हमसे मिलना चाहते होते हैं या हमारे उस कीमती वक्त के मुंतज़िर होते हैं, लेकिन हम इंसान जो कि बहुत ही नाशुक्र हैं, हम क्या करते हैं, हमेशा उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो इमोशनली हमें
हमारे लिए अवेलेबल होते हैं या हमें टाइम देते हैं अपना प्रिकॉशियस टाइम, और इंस्टेड ऑफ दोज हम उन लोगों के पीछे जाते हैं जो जिनकी ज़िंदगी में हम उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं होते या वो हमें उस तरह से वैल्यूएबल नहीं समझते। सो तभी ऐसा होता है कि इंसान ये फील करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लोनली है। सो कभी भी अगर आपको भी ऐसा फील हो कि आपकी ज़िंदगी में मुखलिस लोगों की कमी है, तो हमेशा अपने आसपास इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए और देखिए कि क्या कोई ऐसा मौजूद है जो वाकई आपसे मिलने को एक्साइटेड हो और आप उसे इग्नोर कर रहे हो। एंड आई बेट यू आपको कोई ना कोई तो ऐसा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो उसे अच्छा समझते हैं, लेकिन चूँकि इंसान का कभी ध्यान उनकी जानिब नहीं जाता तो उसको लगता है कि बस वो दुनिया में अकेला है। वेल, आजकल का जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, इट्स 2026 और लाइफ मज़ीद तेज से तेज तर होती चली जा रही है, और अब तो ये सिचुएशन बन चुकी है कि इंसान इस कदर मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में, अपने कारोबार में, अपने काम काज में, कि इंसान के पास वक्त ही नहीं कि वो किसी दूसरे को देखे, दूसरे को चेक करे या फिर उससे बातचीत करे या गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाए। सो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो आजकल के इस फास्ट तेज तरीन दौर में भी आपको वक्त देता है या आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, सो कोशिश किया करिए आप ऐसे लोगों की कदर किया करें, क्योंकि जिंदगी इंसान को ये मौका दोबारा नहीं देती, और हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल ना हो कि जिंदगी एक बार जब वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएं तो दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आए। सो अपने आसपास ज़रूर नज़र दोहराया करें और अपने उन दोस्तों का भी ख्याल रखा करें जो आपसे मिलना चाहते हैं या आपको दिली तौर पर पसंद करते हैं। अच्छा, ह्यूमन नेचर ये है कि जो चीज़ इंसान को बहुत ही ज़्यादा मिल रही होती है इंसान उसे फॉर ग्रांटेड ले लेता है, चाहे अब वो प्यार हो, दोस्ती हो, टाइम हो, अटेंशन हो, या फिर हो पैसा, कुछ भी हो, लेकिन जिस चीज़ की भी मकदार ज़्यादा होती चली जाती है तो इंसान की नज़र में वो उस तरह से वैल्यूएबल नहीं रहती। इंसान हमेशा उसी चीज़ को वैल्यू देता है जो बहुत कम और बहुत थोड़ी मिलती है। सो ये एक रूल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम एक तरफ ये सोचते हैं कि हम जिससे बात करना चाहते हैं वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं, लेकिन हम दूसरी जानिब ये नहीं देखते कि जो हमसे बात करना चाहता है क्या हम उसके लिए अवेलेबल हैं या नहीं। सो ये कुछ मेरी पर्सनल थिंकिंग थी, पर्सनल थॉट्स थी, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। सो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू POV हमसे शेयर कर सकते हैं, या अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं तो हमें बता सकते हैं। वेल, आपने आज के दिन क्या काम करना है, अपने आस पास इर्द गिर्द को ऑब्जर्व करना है और उन अपने दोस्तों से वापस एक कनेक्शन बिल्ड करना है जो इस फास्ट तरीन दौर की वजह से या फिर डेली बेसिस के स्ट्रगल की वजह से आपसे कहीं दूर खो चुके हैं। सो दिल ऐसा इस खूबसूरत सी बात के साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक दिन ब्रेक का, लेकिन ये ब्रेक कमर्शियल ब्रेक नहीं है बल्कि है म्यूजिकल ब्रेक। सो आइए मिलकर सुनते हैं कोई प्यारा सा खूबसूरत सा ट्रैक। तो किस तरह का ट्रैक आपको सुनना है आप भी बता सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल सोच रही हूँ कि कोई एनर्जेटिक सा ट्रैक प्रोग्राम

सक्सेस से रिलेटेड, अच्छा मुख्तलिफ लोगों के लिए सक्सेस क्या होती है, सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. सो सक्सेस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. फॉर सम इट मीन्स क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द कॉर्पोरेट लीडर, वाइल अदर के लिए सक्सेस का मतलब ये होता है कि आपके पास जिंदगी में सुकून हो, पीस हो, एक स्टेबल जॉब हो, अच्छी आमदन हो और बस फैमिली हो, प्यार हो, मोहब्बत हो. सो इसी तरह से डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरह के सक्सेस के मीनिंग्स होते हैं. वेल, आपकी नज़र में सक्सेस का क्या मीनिंग है या आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को किस तरह से देखते हैं, आप ही हमसे शेयर कर सकते हैं. सो अपने कीमती ख्यालात का इजहार करिए हमसे 01157100971 के थ्रू. अच्छा, जहाँ हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे नज़दीक, मेरी नज़र में एक सक्सेसफुल इंसान कौन होता है. सो मेरी नज़र में एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिसके पास एक स्टेबल जॉब होती है, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है और द बेस्ट थिंग इज़ कि जो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है वो उनके इंटरेस्ट से मैच करता होता है. क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन क्या वो अपनी हॉबी को, अपने पैशन को ऐसा करियर लेकर चलते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी डिबेट है. सो सोसाइटी में आजकल ऐसा भी हो रहा है कि जहाँ लोग खुद को बनवाने के लिए, बहुत सारे पैसे कमाने के लिए या फिर सक्सेस की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को और अपने गोल्स को पीछे छोड़ देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं बट सम हाउ सम सिचुएशंस आपको एक कॉर्पोरेट जॉब से अच्छी सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने उस ड्रीम को परस्यू नहीं करते. सो मेरी नज़र में एक सक्सेसफुल इंसान वो है जिसके ड्रीम्स, उसकी हॉबीज़ उसके साथ रहें, उसके पास एक ऐसी जॉब हो जिसमें वो अपने इंटरेस्ट को साथ लेके चले, उससे मजबूर होकर वो काम ना करना पड़े बल्कि अपने दिल से, अपनी खुशी से वो काम करना पड़े, साथ ही साथ उसके पास एक स्टेबल इनकम हो और मज़े की बात यह कि उसके पास उसकी फैमिली हो. ऐसा मोस्टली लोग क्या करते हैं आजकल इस पैसे कमाने की दौड़ में, वो लोग आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं या फिर उन्हें रहना पड़ता है अपनी फैमिली से दूर. तो मेरी नज़र में ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है और इतनी मुख्तसर सी है. सो इसे हमें अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करना चाहिए, फैमिली के साथ रहकर अच्छी यादें बनाकर. सो वेल लिसनर्स, ये थी मेरी सक्सेसफुल पर्सन की डेफिनेशन. अब आपकी भी हो सकता है मुख्तलिफ राय हो या हो सकता है कि आप मेरी इस बात से रिलेट ना करते हों. मेरी नज़र में क्या फ़ायदा इसके ढेर सारी दौलत का जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ ही ना रहते हों, जहाँ आप अपने ख्वाबों को ही परस्यू ना कर सक रहे हों, बस आपके बस क्या हो सिर्फ और सिर्फ दौलत. सो मेरी नज़र में वो सक्सेसफुल इंसान नहीं होता. मेरी नज़र में सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिसकी ज़िंदगी के हर पहलू परफेक्ट हों, बैलेंस हों.

सो वेल लिसनर्स, ये तो ज़रा बात होगी सक्सेसफुल इंसान के मुतालिक। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशनल कोट की जानिब। सो आज का हमारा पहला कोट ये कहता है, डोंट लेट योर सर्कमस्टांसेस होल्ड यू बैक। The first step towards success is taken when you refuse to be a captive of the environment in which you first find yourself. So, कभी भी आप अपने हालात को, अपनी जिंदगी को इस चीज का मौका मत दें कि वो आपको पीछे की तरफ धकेले। ऐसा तभी मुमकिन होता है जब आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ लेकर चलते हो। बाज़ औक़ात इंसान एक ऐसे सिनेरियो में या फिर एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जिसमें वो हर वक्त अपने पास्ट के मुतालिक सोचता रहता है। वो ये सोचता है कि किस तरह से आपका पास्ट इस तरह होना चाहिए था, या आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, या वो काम नहीं करना चाहिए था, एंड ऑल ऑफ दीज सडन थिंग्स जो कि इंसान के माइंड में पॉप अप करती रहती हैं। सो इस सिचुएशन में ये होता है कि इंसान अपने पास्ट को कभी भूल नहीं सकता और पास्ट में ही घुसा रहता है। सो अगर आप अपने पास्ट में ही लगे रहेंगे, पास्ट के बारे में सोचते चले जाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने पीछे को पीछे ही छोड़ दें। गलतियां सब इंसानों से होती हैं। आई नो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और मैंने बहुत सारे लोगों में एक चीज़ देखी है कि इंसान कभी भी खुद को ओन नहीं करता। मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो लोग वक्त के साथ साथ ग्रूम हो जाते हैं, ग्लो अप कर लेते हैं, और फिर वो अपने ही पुराने वर्जन को क्रिंज कहकर पीछे कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। आई नो आप पास्ट में उस तरह से अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप वो सब काम ना करते तो क्या आप आज इस मुकाम पर पहुँच सकते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो आपको अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर हमेशा ओन करना चाहिए। सो अगर मैं फ्यू ईयर्स बैक बात करूँ तो मैं उस वक्त में इस तरह से इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हुआ करती थी। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट और मुझसे ज़्यादा लोगों के बीच में बैठना, बात करना बहुत ही मुश्किल लगता था। और हमेशा मैं अगर किसी ऐसी जगह चली जाती थी जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते थे जो मुझे नहीं जानते होते थे, तो उनके सामने बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज आप सभी के सामने है कि किस तरह से मैं अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हूँ, और आज मैं आप सबसे खुल के बात करती हूँ, अपने पर्सनल थाट्स शेयर करती हूँ, साथ ही साथ आपके पर्सनल थाट्स सुनती हूँ। तो ऐसा ही होता है कि इंसान वक्त के साथ साथ तब्दील होता चला जाता है, लेकिन जो इंसान ये समझता है कि उसका जो पास्ट है वो अब क्रिंज हो चुका है, सो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सो हमेशा अपने पास्ट को ओन किया करें, साथ ही साथ प्रेजेंट को भी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि एक कामयाब इंसान कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, जो उसे हो जाता है सो हो जाता है। वो हमेशा आगे की सोचता है, और वो हमेशा ये सोचता है कि किस तरह से अभी जो आने वाला नेक्स्ट सिनेरियो है इसको अच्छा बनाया जाए। सो डियर लिसनर्स, ये रहा हमारा आज का फर्स्ट इंस्पिरेशनल प्लस मोटिवेशनल कोट। आई होप आपको ये कोट अच्छा लगा होगा, और इससे जो एक कीमती बात जो आपको सीखनी थी आपने भी सीख ली होगी। वेल, इस हवाले से अगर आपने कुछ भी डिस्कस करना हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्यारा सा गाना आप अपने किसी चाहने वाले को डेडिकेट करें, सो डू लेट मी नो। सो डियर लिसनर्स, इस वक्त प्रोग्राम में यानी डीवा डायलॉग में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस मुख्तसर से ब्रेक की जानिब। सो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ इसी तरह से रहना है और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहना है। सो डियर लिसनर्स, ड्यूरिंग ब्रेक में आपके तमाम तर मैसेज की नोटिफिकेशंस पढ़ लूँगी, और कमर्शियल ब्रेक से वापसी पर उन सभी गानों को हम इस प्रोग्राम की जीनत बनाएंगे जो कि हमारे लिसनर्स बेताबी से सुनना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून विद अस, एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम तरह सुनती हुई समातों को खुशामदीद। रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं डीवन डायलॉग। तो लिसनर इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं दूसरा इंस्पिरेशनल प्लस मोटिवेशनल कोड, और ये कोड भी कोई आम कोड नहीं है बल्कि काफी गहरा और डीप मीनिंग से है भरपूर। सो उम्मीद तो पूरी यही है कि आपके माइंडसेट को चेंज करेगा, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं आपके लिए हमेशा वो दरवाजा बंद रहता है, सो उसके हवाले से आपको काफी हद तक मोटिवेट करेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शेयर करती हूँ आपसे ये प्यारा सा कोड। सो अवर सेकेंड कोड सेज, व्हेन वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन्स, बट वी ऑफन लुक so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us. Well, काफी deep meaning छुपा हुआ है इस एक line के अंदर, आइए जरा आपसे उसको describe करती हूँ। सो हमारा कोड ये कहता है कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई एक दरवाजा बंद हो जाता है, सो उसी वक्त कहीं ना कहीं आप सभी के लिए कोई एक नया दरवाजा भी खुल जाता है। मगर आप अपने जिंदगी में इस कदर ना उम्मीद हो चुके होते हैं उस एक बंद दरवाजे को लेकर कि आपको दूसरी साइड का खुला हुआ दरवाजा दिखाई ही नहीं देता। सो सिंपली अगर हम इसकी मीनिंग की जानिब बढ़ते हैं तो हमारा कोड ये कहता है कि जिंदगी में इंसान जो कुछ प्लान करता है, इंसान बस चाहता है कि इंसान की जिंदगी उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चले, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही मुमकिन हो। समटाइम्स आपके प्लान्स कुछ और होते हैं और गॉड प्लानिंग कुछ और होती है, लेकिन आपकी जिंदगी में हमेशा वही कुछ होता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। तो हो सकता है जो आप प्लान कर रहे हैं या जो आप इमेजिन कर रहे हैं वो बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, लेकिन दर हकीकत वो आपके लिए नहीं बना होता। सो हम इंसान क्या करते हैं, उस चक्कर में ना उम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और बस खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं कि अब ज़िंदगी रुक चुकी है, अब तो मुझे मेरा मकसद नहीं मिल सका, तो अब इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप दूसरे दरवाजे की जानिब रुक करते हैं और कुछ वक्त गुजर जाता है तो आपको रियलाइज़ होता है कि यह आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बेहतरीन डिसीजन था, और अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो यकीनन आप कहीं ना कहीं ज़रूर कामयाब होंगे। सो वेल लिसनर्स, अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा सिनेरियो पेश आया है जहां आप करना तो कुछ और चाहते थे लेकिन किस्मत आपके साथ कुछ और कर लेती है, तो आप हमसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, हमें आगाह कर सकते हैं। और रही बात मेरी खुद की, सो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आ चुके हैं जहां मैं कुछ और चाहती थी, मैंने कुछ और इमेजिन किया था, लेकिन समहाउ चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से मैंने सोचा था। तो आज मैं अपनी लाइफ एग्जांपल से इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि जो होता है इंसान की ज़िंदगी में हमेशा अच्छे के लिए होता है। सो कभी भी उस दरवाज़े को खोलने की कोशिश मत करो जो आपके लिए ऑलरेडी बंद हो रहा हो, क्योंकि उसके पीछे की मसलहत आप कभी भी नहीं समझ सकते। सो लिसनर्स, ये था हमारा आज का सेकंड मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशनल कोड। आई होप आपको ये कोड अच्छा लगा होगा और ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर रोनमा होगा। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि ब्रेक के बाद हम उन तमाम तर सॉन्ग रिकमेंडेशंस को शामिल करेंगे जो हमारे लिसनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आइए मिलकर शुरू करते हैं हमारा म्यूजिकल सेगमेंट, और कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसे ट्रैक्स जो आप सुनना चाहते हैं या आप अपने किसी चाहने वाले लव्ड वन को डेडिकेट करना चाहते हैं। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक्स।

सी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये प्यारा सा ट्रैक? सो साथ ही हमें एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की रिकमेंडेशन मौसूल हुई है। सो ये गाना ना सिर्फ प्यारा है बल्कि इसकी खासियत ये है कि ये मेरा चाइल्डहुड सॉन्ग है। सो जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो ये गाना मैंने काफ़ी मर्तबा सुना है। सो आइए पुरानी यादों को करते हैं ताज़ा और सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

we are back once again ek baar phir se tamam sunti hui samaton ko khush aamadeed ji to listeners puri koshish to yahi ki gayi ki aapke bataye hue tamam tar pasandeeda tracks ko hum apne segment mein shamil kare so isi tarah ke mazeed aur bhi khoobsurat aur pyare pyare tracks aap hame recommend kar sakte hain aur hum puri koshish karenge ki isi tarah se theek unhe apne program mein shamil kare so ji kis tarah se aap humse apni geemti ara ka izhar kar sakte hain aur apne pasandeeda tracks bata sakte hain simply 01157100971 is number ke through so simply aapko karna ye hai ki aapko dial kar lena hai ye number apne naam ke sath koi bhi pyara sa paigham ya jo kuch aap share karna chahte hain humse hame likhkar bhej dena hai well hum puri koshish karenge ki usko apne is program mein zarur shamil kare साथ ही साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको स्पेसिफिकली कोई अगर रेसिपी चाहिए हो कोई ब्यूटी टिप कोई मेकअप टिप या फिर दीगर रोजमर्रा जिंदगी से रिलेटेड कोई भी मालूमात चलिए तो लिसनर्स अभी वक्त हुआ है टीवन डायलॉग में प्रोग्राम के अगले सेगमेंट को शुरू करने का सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो अगला सेगमेंट है वो ना सिर्फ मेरा बल्कि आपका हम सभी का है फेवरेट क्योंकि जहां बात हो खाने की वहाँ एशियन कम्युनिटी का फेवरेट टॉपिक वो ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हम एशियंस को खाने का बेहद शौक होता है और खाना भी वो जो कि चटपटा तीखा हो और मज़ेदार सो हमें फीका खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही उबली हुई सब्जियां सो इसीलिए हर रोज़ की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी चटहारेदार सी रेसिपी सो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे उसके तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स और फिलहाल अभी थोड़ा सा सरप्राइज रहने देते हैं क्योंकि अभी एक अदद कमर्शियल ब्रेक हमारे बीच में हाइल होने जा रही है सो आगे बढ़ते हैं चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे शेयर करेंगे आज की रेसिपी सो आपने कहीं पर भी नहीं जाना बिल्कुल हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना है और हम यूं गए और यूं आए

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुशामदीद। सेदो लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो, आपका अपना कंफर्ट प्लेस। सो बेसिकली हमारा ये शो ऑर्गेनाइज किया गया है तमाम तर फीमेल्स के लिए, यानी ऐसी डिवास के लिए जो कि घर में भी काम करती हैं और घर से बाहर जाकर भी काम करती हैं। सो आई नो आप सभी के लिए किस कदर डिफिकल्ट होता होगा घर को, बाहर को और फैमिली, बच्चों, इन सब को एक साथ मैनेज करना। क्योंकि जब से मैंने ये जॉब स्टार्ट की है, आई रियलाइज के इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फैमिली को टाइम देना, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, फिर ऑफिस का काम करना और फिर खुद को भी वक्त देना। सो आई नो इस कदर तेज रफ्तार दौर में इंसान का दिल करता है कि कोई ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो कि बहुत ही इंस्टेंटली झटपट बन जाए। क्योंकि जब हमारी डिवास ऑफिस से थकी हुई घर आती हैं तो दिल नहीं करता कि कोई भी ज़्यादा एफर्ट्स पुट की जाए, पर साथ ही साथ दिल में ये ख्याल भी होता है कि हमारे घर वालों को भी हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगे। सो आपकी इन तमाम दर समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए डेली बेसिस पर मैं लेकर आती हूँ ऐसी रेसिपीज जो कि बिगिनर फ्रेंडली होती हैं, यानी कि आपको बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करने पड़ते और ये रेसिपी हो जाती हैं तैयार। तो ठीक, कुछ इसी तरह से आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आप अपनी नोटबुक रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स। सो आज हम बनाने जा रहे हैं हैश पोटैटोज। सो ये एक बहुत ही वायरल रेसिपी है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है। इसके अलावा जब आप किसी भी रेस्टोरेंट पर जाकर इसे ऑर्डर करते हैं सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ती है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कम बजट में, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे घर पर बना सकते हैं। सो दे लिसनर्स, जितनी देर में आप अपनी नोटबुक, डायरी, कॉपी, पेंसिल रेडी करती हैं ताकि आप नोट कर सके आज के इंग्रेडिएंट्स, उतनी देर में हम एक अदद प्यारा सा गाना सुन लेते हैं। सो हमारे एक लिसनर की फरमाइश है कि ये गाना प्रोग्राम की जीनत बनाया जाए, सो क्यों नहीं, ज़रूर आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक। ट्रैक के उस पार स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी।

पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी। यकीन नहीं होता इतने से वक्त में वो मेरे इतने करीब आ गया है।

जी तो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। सो हैश पोटैटोस को बनाने के लिए हमें जो जो भी इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं उनकी लिस्ट कुछ यूं है। सो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए पोटैटोस 4 मीडियम साइज, कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून, बटर 1 टेबल स्पून, अनियन 1 अदद फाइनली चॉप्ड, शिमला मिर्च 1.5 कप, नमक 1.5 टीस्पून या फिर हस्पे ज़रूरत हस्पे जायका, काली मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1.5 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1.5 टीस्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया 2 टेबलस्पून, चीज़ 1.5 कप, ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, क्योंकि चीज़ से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसे बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। एंड लास्टली ग्रीन अनियंस 1 टेबलस्पून। सी तो लिसनर्स, ये थे सभी इंग्रेडिएंट्स। मैंने पूरी कोशिश की है कि हम अपनी रेसिपी को थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली रखें ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और आप इजीली इसे बना सकें। सो ये थे सभी इंग्रेडिएंट्स, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपसे हो जाता है कुछ भी मिस तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप सिंपली हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, रابطہ कर सकते हैं और मैं आपकी उस क्यूरी को ज़रूर दूर

हमारे पोटैटो ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे। सो अब बारी आती है पोटैटोज को वाटर से निकाल कर अच्छी तरह ड्राई कर लेने की। नेक्स्ट एक फ्राइंग पैन को हम मीडियम हीट पर गर्म कर लेंगे। इसमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे। सो जब हमारा बटर बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो पोटैटोज पैन में ऐड करेंगे और इन्हें इवनली स्प्रेड कर देंगे। पोटैटोज को कुछ मिनट्स तक बिना ज़्यादा मूव किए कुक करेंगे ताकि नीचे से नाइस गोल्डन क्रश बन जाए। अब हम क्या करेंगे, अपने तमाम तर पोटैटोज को टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें गोल्डन होने तक पका लेंगे। सो जैसे ही हमारे पोटैटोज अच्छी तरह से गोल्डन और ऑलमोस्ट कुक हो जाएंगे तो हम चॉप्ड अनियन, कैप्सिकम, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर देंगे। इन्हें पोटैटोज के साथ 4 से लेकर 5 मिनट तक कुक करेंगे। अब आएगा हमारा सीजनिंग पार्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर और पेपरिका। सो सब इंग्रेडिएंट्स को जेंटली आप उसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसे कुछ मिनट्स और मजीद कुक करेंगे जब तक पोटैटोज कम्प्लीटली सॉफ्ट और क्रिस्पी ना हो जाएं। फाइनली हम फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन अनियंस को ऐड करेंगे। अगर आप चीज लवर हैं तो ऊपर से थोड़ी सी ग्रेटेड चीज ऐड करके पैन को कवर कर देंगे और चीज को मेल्ट होने देंगे। एंड देयर वी हैव इट, हमारी डिलिशियस क्रिस्पी और फ्लेवरफुल हैच पोटैटोज आर रेडी टू सर्व। तो इसी तरह से हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी झटपट हो गई तैयार। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, चाहें तो अंडे के साथ, केचप के साथ या अपनी किसी भी फेवरेट डिप के साथ। मज़ेदार सी इस रेसिपी को आज ही ट्राई करें। ट्राई करने के बाद इसे अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ इंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। सो हैप्पी कुकिंग, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मजीद मजे मजे की रेसिपीज के लिए भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि हमें किस तरह की न्यू फूड सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। सो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम अपने प्रोग्राम को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि जिसमें आपकी तमाम तरह की समस्याओं का हल निकाला जाए। लिसनर्स, ये तो थी हमारी आज की द स्पाइस किचन की मजेदार सी रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाजमी ट्राई करिएगा और फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आज मैं सभी डिवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी सी ऑर्गेनिक सी होममेड रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा असरअंदाज करेगी और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे आफ्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अब कुकिंग तो हो गई, किचन भी हो गया, अब ज़रा किचन में ही हम मौजूद हैं तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और किचन के कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मास्क रेडी किया जाए। सो बेसिकली ये जो होम रेमेडी है, इट्स लाइक अ स्क्रब, और स्क्रबिंग आप सभी को मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पर इस तरह का मौसम, जब मौसम थोड़ा सा तब्दील हो रहा हो तो डर्ट, पोल्यूशन, इन सभी के पार्टिकल्स हमारी स्किन के साथ फिक्स हो जाते हैं और वी नीड टू रिमूव दिस। तो किस तरह से हम उसे रिमूव कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल साबुन से या फिर क्लेंजर से फेस वॉश करते हैं तो प्रोबेबली हो सकता है कि बहुत सारे डर्ट पार्टिकल्स ना निकले, लेकिन स्क्रब एक वाहिद ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी डेड स्किन को रिमूव कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को, ओपन लॉक पोर्स को और साथ ही साथ जितनी भी सन टैनिंग है उसे भी दूर कर सकते हैं। सो मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सा DIY मास्क रेडी करना सिखाती हूँ, जो कि है एक स्क्रब, और जब आप इसे वीक में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त से रिजल्ट्स मिलेंगे। सो जिस स्क्रब के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कॉफ़ी, 2

चम्मच, साथ ही साथ हमें पिसी हुई चीनी चाहिए 1 से 2 चम्मच। और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून रोज वाटर। सो ये बेसिक से 3 इंग्रेडिएंट्स है। आई होप आप सभी अभी किचन में ही मौजूद होंगी, तो जल्दी से देख लीजिए इन इंग्रेडिएंट्स को।

0: सेहत लिसनर्स, मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से हमने ये मास्क रेडी करना है. सो सिंपली आपने कॉफ़ी को साथ ही साथ क्रश्ड शुगर एंड रोस्ट वाटर, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स. कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो चीनी हो वो पिसी हुई हो, क्योंकि जेंटल एक्सफोलिएशन के लिए हमें बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है. सो अच्छी तरह से आपने इसे रेडी कर लेना है और वीक में 2-3 मरतबा आपने इसे अपने फेस पर, हैंड्स पर, बाजू पर और वो तमाम तर एरियाज जो कि सन एक्सपोजर की वजह से हुए हैं डैमेज, वहां अप्लाई कर लेना है. एंड यू विल से आपको इसके आफ्टर और बिफोर रिजल्ट्स में काफ़ी हद तक फर्क महसूस होगा. सो ये था हमारा आज का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्यूटी मास्क. इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम यानी डीवा डायलॉग का वक्त हुआ जाता है खत्म. उम्मीद तो यही करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. प्रोग्राम के हवाले से अगर आपकी हो कोई भी समस्या या फिर हो कोई भी कंफ्यूजन, सो आप हमसे पूछ सकते हैं बिला झिझक 0115710097 इस नंबर के थ्रू.
1: बड़े मुश्किल से.
0: साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं कि www.radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है. सो ना सिर्फ ये एक वेबसाइट है बल्कि ये वो जरिया है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी हर तरह की मालूमात हासिल कर सकते हैं. सो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के हवाले से चाहिए हो, सो इस वेबसाइट को जल्दी से लॉग इन कर लीजिए और हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए. सो उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन खूबसूरत गुजरेगा अच्छी हसीन यादों के साथ. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दुआओं में याद रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. और जाते जाते ये प्यार सा ट्रैक आप सभी के लिए प्ले करती चलती हूँ. सो आप ये ट्रैक इन्जॉय करें और मुझे अलविदा करें.

0: I'm late. I have to go.
1: Come here. Let's get our own place.
0: What?
1: Let's get our own place.
2: क्या तू शर्त लगा ले अक्षय, मूविंग इन विद हर इज अ बैड आइडिया.
1: विक मैं कह रहा हूँ, शी इज रियली नाइस.
2: अबे शी इज अ प्रिंसेस यार. अपने घर का रेंट तो तू अफोर्ड कर नहीं पाता, उसके लिए घर कहाँ से लाएगा? अबे तू पेंटर है, कोई वॉल स्ट्रीट ब्रोकर थोड़ी ना है. ट्रस्ट मी ऑन दिस,

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916 8231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: सवाल अभी कमर्शियल ब्रेक एक खाया होने लगे प्रोग्राम में इसके सवाल है आपसे मुलाकात स्टे ट्यून फॉर 107.1 एफएम एंड ऐप मिलते हैं इस ट्रैक 900 सॉरी इस ब्रेक के उस पार दिमाग
1: इट्स कमर्शियल टाइम
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान कहाँ हो यार
4: कहाँ होना है ट्रैफिक में फंसा हूँ
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों जल्दी क्या है
4: यार घर की ग्रोसरी करनी है सब्जियाँ लेनी है फल लेने हैं गोश्त
3: अरे वेट वेट वेट वेट तो इतनी परेशानी क्या यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ हलाल गोश्त एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं और हाँ ये HMC सर्टिफाइड भी हैं
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं चाहे लंच हो फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793
5: Ariana Supermarket 126132 Grassington Road NG8 3P Nottingham Monday to Saturday 8 AM to 8 PM Sunday 10 AM to 8 PM Ariana Supermarket freshness you can trust prices you'll love
6: हेलो कहाँ पर हैं आप
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ या आपके दिल में या फिर ऑफिस में
6: अरे जाने दे बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास
7: आए हाय हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप
6: अरे मिर्चों से याद आया घर में ना आटा है ना दालें हैं ना चावल हैं और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है लेकिन आप तो आप है ना
7: तो फिक्र किस बात की है पाक फूड्स है ना जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152, Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

अंजलि पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

0: Sarigama Karwa, the perfect gift for your loved ones.
1: तू लव करती है ना मेरे से, बस लव है तो सब है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: उतनी जफर के करीब हो रही थी। दुनिया के लिए जफर बस एक पहेली था, लेकिन उसको सुलझाने में मैं उलझ रही थी। वो तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आया और मैं उम्मीद की तरह उसके साथ बह गई।
1: तुम्हें पता है लाहौर का पुराना नाम लोहावर था, यानी लोहारों का शहर। इस जगह की पहचान उसके लोहारों से है। अंग्रेज यहाँ पे मशीन लाना चाहते हैं जिससे सारे लोहार बेरोजगार हो जाए। मुझे समझ नहीं आता

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो?
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सलोराज की। और बैकग्राउंड म्यूजिक को चेंज कर लेते हैं और आपके साथ टॉपिक को शुरू कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, मजे मजे की बातें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सो कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें तो मुझे लाजमी बताइएगा। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगी कि ज़िंदगी हर जीने वाले के पास नहीं होती, तो आप जो है ना अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें, ना कि टेंशनों में गुजार दें, क्योंकि टेंशनें जो है वो जो आती जाती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप को इतना फ्रेश रखें, अपने आप को इतना ठीक रखें कि टेंशन में बोले कि यार इसको तो कोई मसला ही नहीं हो रहा। क्योंकि तजुर्बात जो है ना वो हालात से आते हैं, उम्र से नहीं। तो इंसान किसी भी उम्र में समझदार हो सकता है, मेच्योर होना बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मैं 2 साल पहले मैं भी कोई इसी तरह की अनमेच्योर लड़की थी, बट 2 साल में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मैं टोटली चेंज होके रह गई। मतलब मैं इमेच्योर लड़की कब मेच्योर होगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इस तरह की बन जाऊँगी। लेकिन होना चाहिए, ज़िंदगी में समझदार होना पड़ता है ज़िंदगी को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, ख़ासतौर पर उन लोगों को समझने के लिए जो आपके अपने नहीं हैं। क्योंकि भरी महफिल में हमें कोई आइडिया नहीं कि कौन हमारा अपना है कौन नहीं है, बट जिनके साथ आपको लगता है कि वो आपके साथ सही से चल रहे हैं, तो आप उनके साथ सही से रहें, सही से चलें, कि ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देती, अच्छे से गुजारें एक दूसरे के साथ। आई डोंट नो कि अगला सांस आना भी है या नहीं आना। सो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ अगर लेकर आते हैं तो दूसरों की ज़िंदगी में भी लेकर आए, ना कि उनकी ज़िंदगी से छीन कर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। ये बहुत बुरी बात है ये। हमेशा कहती हूँ कि अपनी भलाई उसी में देखें जिसके पीछे किसी का नुकसान ना हो, ना कि आप अपना फ़ायदा देखे जाएं और दूसरों का नुकसान पे नुकसान होता जाए ना। ये चीज़ नहीं करनी और ये चीज़ करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभार हमें आइडिया नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं, तो वो एंड दी एंड हमें कहीं ना कहीं पर जाके पछतावा कहते हैं ना, वो ज़रूर होता है कि यार उस टाइम पर मैंने उस फलां बंदे के साथ इस तरह का काम किया था तो शायद उसकी सज़ा मुझे अभी जाके मिली है। रुस्वा किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं, ऊपर की ज़ात कहती है कि जब आप किसी को रुस्वा करते हैं तो बेशक तुम 7 कमरे पीछे ही क्यों ना बैठे हो, तुम वहाँ से रुस्वा हो जाओगे और कर दिए जाओगे बल्कि।

सो इसी के साथ साथ मेरे पास फरमाइश भी एक है, और साथ ही में जो है वो ट्रैक की फरमाइश है, और एक छोटा सा पैगाम भी प्रोग्राम में शामिल करवाया गया मेरे में, तो मैं उसको भी शामिल कर देती हूँ अगर आप मुझे कहते हैं तो। बड़ी ही प्यारी बात है। इकबाल लिखते हैं कि ठिकाना कब्र है, कुछ तो इबादत कर इकबाल, रिवायत है कि खाली हाथ किसी के घर नहीं जाया जाया करते।

बहुत मजे की बात थी, और अगर इसको डीपली डिस्कस किया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सी ऐसी बातें निकलेंगी जिनके बारे में मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बात का इल्म मुझे ही हो। कभी कभार मुझे कुछ बातें नहीं पता होती जो आपको पता होती हैं, कभी कभार आपको बातें नहीं पता होती जो मुझे पता होती हैं, इसलिए हम कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ बातें आप तक पहुंचाते हैं, कुछ बातें आप हम तक पहुंचाते हैं। और जिन नए लोगों ने आज अभी फजलन 7.1 एफएम का ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकाकार अगेन बता देते हैं, 01157100971। इस खूबसूरत नंबर कीजिएगा सेव, सेव कर लेने के बाद व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से, साथ ही में गूगल पर सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और जो लोग मुझे घर बैठे सुन रहे हैं, मोस्टली खवातीन मुझे घर बैठे सुनती हैं इस टाइम पे, तो अगर आपको कुकिंग के हवाले से कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रेसिपी प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहें मेरी तरफ से, तो मुझे बताइएगा। अगर मेरे तरीके से कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, या फिर अपनी रेसिपी कोई प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहते हैं तो चाहते हैं कि मैं आगे अपने प्यारे लिसनर तक उनको शेयर करूं, तो मैं उनको लाजमी कर दूंगी, आप बस मुझे छोटा सा मैसेज कर दीजिएगा। और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ऑफिस की तरफ निकल गए, अगर आपके ऑफिस में जाते साथ हो चुकी है बहुत से थोड़ी सी अनबन, तो कोई बात नहीं, आपके मूड को हम फ्रेश करेंगे। चुपके से जाना वो हेडफोन्स लगा लीजिए और रेडियो फजा को ट्यून कर लीजिए, बस शर्त ये कि इंटरनेट आपका अपना होना चाहिए। पहले पहले जो होता था ना, मतलब पहले हम लोगों ने जाना एक दूसरे के घर, तो वो एक सीन होता था कि जाते सब पानी पूछना, जूस पूछना, कोल्ड ड्रिंक पूछना, लेकिन अब जो सीन ऑन हो गया ना, वो कुछ इस तरह से है कि जब आप किसी की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके पानी का गिलास नहीं मांगा जाता, सबसे पहले जाके मांगा जाता है कि वाईफाई का पासवर्ड दे दीजिए। मांगी हुई चीज़ का मज़ा आता है, लेकिन बेइज्जती भी फील होती है, तो कोशिश ये करें कि उन्हें नेट पैकेज रखा करें। अगर आप सोशल मीडिया के ज़माने में रहना चाहते हैं ना, तो फिर आपको अपना पैकेज रखना पड़ेगा, या ना कि आप दूसरों के रहमो करम पे रहेंगे कि यार वो मुझे देगा हॉटस्पॉट तो तभी मैं उसको यूज़ करूँगी, तो नहीं, आप अपना वाईफाई रखें, अपना पैकेज रखें। अच्छा, दरअसल कुछ ट्रैक्स को सुनने के बाद मेरा दिल करता है कि मैं खुद भी गुनगुनाया करूं। अवल मेरी आवाज़ अच्छी है, इतनी खासी बुरी नहीं है, थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन कभी कभार जो है मैं गुनगुना भी लेती हूं, और मोस्टली जब मैं अपने घर में होती हूं तब मैं बहुत ज़्यादा गुनगुनाती हूं। बट मैं भी शायद मैंने लास्ट टाइम इधर एक गाना गाया था रेडियो पे ही, बट अब मुझे याद नहीं है, वो भी बस थोड़ी सी मस्ती के लिए, इंटरटेनमेंट तो आपके साथ रहती है, तंज़ो मज़ाक भी आपके साथ मेरा जारी रहता है। लेकिन खैर, अब उसी के साथ साथ बात ये कर लेते हैं कि अभी जो है ना, वो तकरीबन मेरे आपके दरमियान वक्त होगा थोड़ी सी देर के बाद कमर्शियल ब्रेक का। अब वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को खाना शुरू करते हैं ना, तो जब मज़ा आने लग जाता है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो अभी वही सीन आ गया, जब मुझे आपसे बातें करने में मज़ा आने लग जाता है तो या तो टाइम ख़त्म हो जाता है या फिर कमर्शियल ब्रेक का समय आ जाता है। अच्छा, मज़े की बात, मैंने ये ट्रैक सुना हुआ है कोक स्टूडियो, आई थिंक सो, हाँ जी, कोक स्टूडियो सीज़न 15 है, और मैं इस ट्रैक को इतना सुना है मैंने, मतलब उस तरह से नहीं सुना, बट मैंने इसकी वीडियो आज पहली दफ़ा देखी है और काफ़ी अलग सारी वीडियो बनी हुई है। बस बताइएगा कि आपका मोस्ट फेवरेट ट्रैक कौन सा है, मैं उसको प्रोग्राम में शामिल कर दूंगी। बट उसी के साथ साथ अभी जो है ना, वो तकरीबन मेरे आपके दरमियान कमर्शियल ब्रेक का समय होगा, उससे पहले एक छोटी सी फरमाइश को पूरा कर देते हैं, फिर ये ना हो कि फरमाइश बीच में आधी अधूरी रह जाए और फिर आप बोलेंगे यार सलूर आज हमारी फरमाइश तो पूरी ही नहीं हुई। बट डोंट वरी, आई एम हियर, हम अभी तक हैं आपके साथ, अगले सेगमेंट हमारा मोस्टली होता ही म्यूजिक है, और अगले सेगमेंट में आपकी ढेरों फरमाइशों को मैं पूरा करूँगी। सवाल आइए चलते हैं अगले ट्रैक की जानिब।
ٹیون کر کے رکھیے گا وزن 7.1 ایف ایم کو. اینڈ ڈیپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں مرتضیٰ اور سمر جعفری کی آواز. اس ٹریک کو سنیے گا, اس ٹریک اس پر ایک آپ سے ملاقات. اسٹے ٹیون وزن 7.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ. ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सलराज की। सो उसी के साथ साथ अभी प्रोग्राम में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक फॉलो हुई थी। कमर्शियल ब्रेक के बाद ही मेरी आपसे मुलाकात। उसी के साथ साथ हमारा लास्ट सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है एंड फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट मैंने रखा होता है अपने प्रोग्राम में म्यूज़िक का, क्योंकि उस तरह से फरमाइश मैं पूरी नहीं कर पाती, उस तरह से ट्रैक प्ले नहीं किए जाते प्रोग्राम में। लेकिन अभी जो है वो मेरे पास एक बड़ी खूबसूरती फरमाइश मौजूद है। लेकिन उससे पहले जो है एक छोटा सा मैसेज भी प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहती हूँ। यार ये किस तरह के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करवा रहे हैं आप लोग, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इसको शामिल करूँ तो करूँ किस बात से।

हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती समातों को रेडियो 107.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। फिर ग्राम आप सुन रहे लंच बॉक्स लॉन्च वाज ऑप्शन सुराज की समझी के साथ साथ अभी तकरीबन वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अब अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह ने के बान। अल्लाह हाफिज़।

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

भाई का ही खूबसूरत गाना था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी खुद को दूसरों से कम न समझें। हर इंसान अपनी जगह मुनफरिद है। किसी की कामयाबी देखकर मायूस होने के बजाय, उससे हसद करने के बजाय अपने सफ़र पर यकीन रखें, क्योंकि हर शख्स का वक्त अलग होता है। एक आपको मालूमात में, आपकी मालूमात में इजाफा करते चाहूँ कि क्या आप जानते हैं कि मुस्कुराने से जिस्म में ऐसे हार्मोन खारिज होते हैं जो ज़हनी दबाव कम करने में मदद देते हैं। यानी एक मुस्कुराहट न सिर्फ आपका बल्कि आपके आसपास के लोगों का दिन भी बेहतर बना सकती है। तो आज किसी एक ऐसे शख्स को ज़रूर मुस्कुरा के देखिए, उसके मुस्कुराने की वजह बनिए। अब चलते हैं अगले खूबसूरत गाने की तरफ। सुनिएगा और सर दुनिएगा।

दोस्तों मुमकिन नहीं है किसी को भुलाना। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल चल रही है तो याद रखिए, मुश्किल हमेशा मुस्तकिल नहीं होती। रात जितनी भी लंबी हो सुबह ज़रूर आती है। याद रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, अपनी दुआओं को मजबूत रखें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह आपकी दुआएं भी रंग लाएंगी और आपकी मेहनत आपको खुशी देगी और आपकी कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। आज का सवाल है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगी? अपनी राय हमें ज़रूर भेजिए। आपके खूबसूरत पैगामात और आरा हमारे प्रोग्राम की रौनक हैं। पैगामात भेजने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 0115-7100971। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ और अपना खूबसूरत सा पैगाम भेज दीजिए। वक्त है खूबसूरत और बेहतरीन गाने का, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा एफएम 97.1 और मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेजबान, जो अगले कुछ लम्हात तक आपका साथी हूं। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर एक गलती हम करते हैं, खुशियां आने का इंतजार करते रहते हैं, हालांकि खुशी इंतजार से नहीं शुक्र से पैदा होती है। जिस दिन इंसान ये सोच ले कि मेरे पास जो कुछ है वो भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, इस दिन जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत महसूस होने लगती है। अगर आप इस वक्त दफ्तर में हैं, दुकान पर हैं, गाड़ी चला रहे हैं या घर में चाय का कप हाथ में लिए बैठे हैं, तो एक लम्हे के लिए मुस्कुराइए, क्योंकि शायद किसी और के लिए आपकी यही मुस्कुराहट उम्मीद बन जाए। चलिए पैगामात की तरफ चलते हैं, हमारे पास बहुत ही खूबसूरत पैगामात आए हैं। एक खूबसूरत पैगाम आया है वकास भाई रावलपिंडी से। मैं इस वक्त इस्लामाबाद से रावलपिंडी जा रहा हूँ, ट्रैफिक काफ़ी है, लेकिन अब प्रोग्राम सुनकर सफ़र आसान लग रहा है। मेरी अहलिया और बच्चों के लिए खूबसूरत गाना प्लीज़। वकास भाई, अल्लाह ताला आपके सफ़र को महफूज रखे, आपकी फरमाइश भी शामिल करते हैं। और एक और मैसेज आया है सिदरा गुजरात से, मेरा आज इंटरव्यू है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। पूरी रेडियो फजा की टीम की तरफ से आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन फैसले फरमाए और आपको कामयाबी नसीब फरमाए। चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना, सुनिएगा और सरदुनिएगा, सुनते रहिए फजा 97.1 FM, क्योंकि रेडियो फजा आपका अपना रेडियो है।

वापस आ गए हैं हम और उम्मीद है गाना आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आज एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहूँगा, हम में से अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त सबके पास बराबर होता है, फ़र्क सिर्फ तरजीहात का होता है। अगर रोज़ाना आप सिर्फ 10 मिनट अपने लिए किसी अच्छी किताब के लिए, कुरान मजीद की तिलावत के लिए, या मजहबी किसी भी रहनुमाई के लिए, वालदैन के साथ बैठने के लिए, या अपने बच्चों की बात सुनने के लिए निकाल लें, तो चंद महीनों बाद ज़िंदगी में वाज़ह तब्दीली महसूस होगी। याद रखिएगा कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, फिर मैं कह रहा हूँ याद रखिएगा कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा उस्ताद, बुजुर्ग या दोस्त है जिसकी एक नसीहत आज भी आपके साथ है, उसकी नसीहत आपने आज भी अपने पल्ले बांधी है। अपने जवाब हमें भेजिए, बेहतरीन जवाब हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। तब तक के लिए ये सॉन्ग सुनिएगा और सर धुनिएगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

वेलकम बैक टू रेडियो फजा। आज की मालूमात में तहकीक बताती है कि जिन घरों में वालिदैन रोज़ाना बच्चों से तालीम के बारे में बात करते हैं उन बच्चों के एतमाद सीखने की सलाहियत और अखलाकी रवैया बेहतर होता है। इसलिए सिर्फ ये ना पूछें कि कितने नंबर आए हैं बल्कि भी पूछें कि आज तुमने कौन सी नई बात सीखी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले तो पहले खुद सच बोलिए। अगर चाहते हैं किताबें पढ़े तो कभी कभी उसे अपने हाथ में भी किताब नज़र आनी चाहिए। बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे किरदार से ज़्यादा सीखते हैं। दोस्तों आजकल एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि बच्चे पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन कभी हमने खुद से ये सवाल किया क्या हम पहले जैसे वालिदैन और असाज़ा रहे हैं? बच्चा खाली उस जहन होता है, यानी खाली जहन के साथ पैदा होता है। उसकी पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, दूसरा स्कूल उसका घर और तीसरी दरसगाह उसका तालीमी इदारा। अगर ये तीनों मजबूत हों तो बच्चा भी मजबूत किरदार का मालिक बनता है। किसी दाना ने कहा था कि बच्चे आपकी नसीहत कम और आपकी आदतें ज़्यादा सीखते हैं। अगर घर में सलाम आम होगा तो बच्चा भी सलाम करना सीखेगा। अगर घर में किताबों का माहौल होगा तो बच्चे का दिल भी इल्म की तरफ मायल होगा। अगर घर में इज्जत मोहब्बत और बर्दाश्त होगी तो यही औसाफ उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगे।

दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत न करें बल्कि ये सोचें कि अगर अल्लाह ने उन्हें दिया है तो वो आपको भी दे सकता है। और इंसान का वक्त मुख्तलिफ होता है, इसलिए मायूसी कभी भी कामयाबी का रास्ता नहीं बन सकती। यहाँ वक्त वो एक खूबसूरत नगमे का, इसके बाद हम प्रोग्राम को अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ाएंगे। सुनते रहिए फसा 97.1 FM।

याद रखिए, जिंदगी चाहे कितनी मसरूफ क्यों ना हो, अपने वालिदैन के लिए वक्त निकालिए, अपने अजीज व अकारिब का हाल जरूर पूछिए और हर दिन किसी न किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी नेकियां ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं।

तो दोस्तों आज की ये खूबसूरत महफिल अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। वक्त का सफर भी अजीब है, बातें करते करते मालूम नहीं था कि वक्त कहाँ गुजर गया। उम्मीद है कि आज की नशिस्त आपके चेहरों पर मुस्कुराहट और दिल में खुशी छोड़ गई होगी। आपकी मोहब्बत, आपके पैगाम और आपकी फरमाइशें ही हमारे प्रोग्राम की असल खूबसूरती हैं। हम जहाँ भी हों, जिस हाल में भी हों, हमेशा दूसरों के लिए आसानी और खुशी का सबब बनने की कोशिश करें। अपने वालदैन की कदर कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन वालदैन का नेमुल बदल नहीं है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वक्त दीजिए, क्योंकि खूबसूरत रिश्ते तवज्जो और खलूस से मजबूत होते हैं। अगर किसी से नाराज़ी है तो उसे ख़त्म करने में पहल कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और दिल बहुत कीमती है। इंसानों की कदर कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए। किसी के लिए आपका एक अच्छा लफ्ज़, एक दुआ या एक मुस्कुराहट भी उसके दिन को बदल सकती है। हमेशा याद रखिए, अंधेरी रात कितनी ही तवील हो, सुबह ज़रूर तुलू होती है। इसलिए मुश्किलात से घबराइए नहीं, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। अल्लाह ताला आपके हर दुख को खुशी में, हर परेशानी को आसानी में और हर मुश्किल को कामयाबी में बदले। आपके घरों में मोहब्बत,

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं, तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में जियो, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे रहे।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्त दा मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: It's commercial time.
7: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
10: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
11: अरियाना सुपर मार्केट 126-132 ग्रासिंगटन रोड NG8 3P Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Ready to move.
8: It's all about the beats.
9: Wow, FM.
10: Only tune Super Hit Channel.
11: Fizz on 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
1: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Hit music, entertainment, poetry, news, and
8: you are listening 97.1 FM.

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सब

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM.
6: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
8: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
9: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है
8: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
9: ओहो मुबारकबाद बहुत जल्दी आ गया.
8: सारी नसीब दी गल है. मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
9: उनका नाम ही बता दे हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
8: AMH सॉलिसिटर्स और कौन ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज से जल्दी कम कर दे रहे सोने दे स्वागा ये क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने.
9: चलें उनका पता भी बता दें आपको तो जुबानी याद होगा.
8: हाँ जी क्यों नहीं. नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम.
9: जबरदस्त मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है.
8: लो जी ओ भी जुबानी याद है 0115-671-3677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने मुफ्ता मशवरा लो जी.
10: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115-671-3677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
7: रेडियो पल्सर 97.1 एफएम।
8: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM।
13: You are listening to Radio Faza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: साथी। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: You are listening to 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to 97.1

कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is 97.1 Fazan FM.
3: You're listening to Radio Fazan 97.1 FM. Enjoy soulful songs of Rafi only on Dedication Hour

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें।